अबर बगुलों के ले लो बाहें भर लो ना, बोलो तो सिलवाओ सब जेवर फूलों के, खुशबू गहने भर लो ना।

0: ट्रक है गोरी जरा संभल
1: पापा पापा पापा पापा पटरी पे चल।
0: चिकनी सड़क है गोरी जरा संभल
1: पापा पापा पापा पापा पटरी पे चल।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?